0: From Merrioak to Mayfield, from Bitton to Bassett, this is Ours
1: the
0: FM.
1: ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest and truthful. Oh, yes.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
0: You're listening to South Hampshire's biggest multi-language community radio station, Ours FM 99.8, making Southampton great.
3: This is Ross and Arlo. We're loving all the tunes in the car. We've just come back from Southampton Hospital, where they fixed Arlo's arm in the hospital there. And we'd like you to play a tune for everyone else recovering with the great teams there. Keep up the amazing tunes.

0: You're listening to South Hampshire's biggest multi-language community radio station, Hours FM 99.8, making Southampton great.
1: This is Ross and Arlo. We're loving all the tunes in the car. We've just come back from Southampton Hospital, where they fixed Arlo's arm in the hospital there. And we'd like you to play a tune for everyone else recovering with the great teams there. Keep up the amazing tunes.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
0: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
4: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
5: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं मैं तुम्हें सलाम करता हूँ इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं उनमें एक प्रोग्राम शेरो नगमा भी है ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेरो नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं ज़रूर इसमें शामिल हों वक्त किसी का दोस्त नहीं ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए वक्त के साथ चलें वक्त की तज़ीम करें आखिर में दो शेर जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं शम में बज में तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं दिन डूबे तो छुप जाते हैं साए आखिर साए हैं

0: the dark. Hello. Makes you notice, doesn't it? A little bit of darkness refines the senses, focuses the mind. And let's get into it. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Do you like the voice? Do you want me to do it again?
1: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: हर समय हर जगह नहीं हो सकती ऐसे में उसका एहसास देती है हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम

0: हाँ, ये गाना भैया, ये तो मेरा भी बहुत बहुत फेवरेट गाना है। मजा आ गया सुनने में, बहुत अच्छा।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Southampton's community radio, Awaaz FM.
4: Hello, I can listen the song for Madison, please. Name is Ashfaq. Is Jeevan par saath nibhayenge hum dono. Please, agar ho sake to meherbani, shukriya.

0: Hello there, Ali. It's Malcolm here. I've actually got Awaz FM on my digital radio now. Can you hear it playing in the background? Thoroughly enjoyed speaking to my old friend Rahir Baines this morning. Thank you very much.
1: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: अस्सलाम वालेकुम पुत्र क्या हाल या ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਸ਼ਤੋ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਸਾੜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਾਈ ਛੋੜੋ ਜੋ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮਾ ਜ਼ਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੜਕ ਨਾ ਰਾਜ ਦੇ

0: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी क्लब सुनना ना भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज FM पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर ले। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज कैरियोकी क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज FM पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुँचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज FM के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: From the heart of Southampton, reaching out to the community, this is Awaaz FM 99.8.

0: Our new jingle could just be us saying we need a new jingle.
1: We need a new jingle, yeah.
2: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest and truthful. Oh, yes.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.

0: Hi guys, this is Tahaji and you're tuned into Awaz FM. You can follow me on Instagram by searching up one and only TG. Have a great day.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: From the heart of Southampton, reaching out to the community, this is Awaz FM 99.8.

0: shut me up. So I'm going to...
1: I wonder what you would do if you had the power to dream any dream you wanted to dream.
2: Southampton's Community Radio, Hours FM.
1: Fulfilling all your wishes. Music beyond belief.
3: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
4: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
0: that we've been greatly missed, Simon.
5: We certainly have, that's for sure.
0: Who else are you going to listen to?
6: Southampton ek khoobsurat tareekhi shehar samandar ki neeli lehron ke kinare ye abad shehar apne andar kitne raaz chupaye hue hain meri jawani ka shehar jiski god mein maine kitne sunehre din guzare hain main tumhe salaam karta hu. इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं उनमें एक प्रोग्राम शेरो नगमा भी है. ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेरो नगमा हर जुमा को दिन के 2 बजे शुरू होता है. मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे. हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर उसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं. ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें. आखिर में दो शेर. जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू. जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू. ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं. शम में बज में तरफ बुझ जाए फिर अपने भी फराए हैं. दिन डूबे तो छुप जाते हैं साए आखिर साए.
7: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
8: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community Radio, we're all about here.
9: 2 straight hours of sports nerds talking about every kind of sport imaginable. Start again.
10: The Behind the Mic Show.
11: Tune in every Monday
10: from 1 till 3.
12: Sporting waffle and absolute nonsense.
13: Talking about sport.
11: On Awaz 99.8 FM.
14: क्या चीज कुछ तो कहो कहो ना बोलो.

Yeah, the Moisture. तमाशा बनता है फिर कैसा लगता है आईने में देख तो खुद

के लिए मैं मुखलिस हूँ। कहती हैं वो मैं कुछ भी नहीं, खुद में दिखता अपना कल हूँ।

0: In the meantime, we need Simon's assistant to put the sliders down to shut me up. So I'm going
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Awaz FM local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: Every Saturday at 5, it's the Winchester Talking Newspaper on Hours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Kitchen on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on

0: From Merrioak to Mayfield, from Bitton to Bassett, this is Hours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.

0: This is Shweta Subram, and keep listening to Awaaz FM.
1: The
0: you guys
1: ASA
0: are awesome.
1: Regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: जी सजनो तुसी सुनिया है सॉन्ग वेलकम सॉन्ग कैसा लग गया तुहानू सानू ते जेड़ा लग्या सी तुहानू दस ही दित्ता हुण तुहानू एक ऐसा लग्या ए तुसी दसोगे एदे उत्ते अपनी राय दोगे कमेंट्स राही भी दसोगे सानू तुसी मैसेज राही भी दसोगे सानू व्हाट्सएप राही भी दसोगे तुहानू कैसा लग्या अपनी अपनी राय जेड़ी है एदे उत्ते तुसी लाजमी दियो

0: Hours FM, live across Southampton on 99.8 FM and on DAB Channel 7D in South Hampshire and via the website hoursfm.co.uk.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: अपने काम धंधे व कारोबार को मशहूर और बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आवाज एफएम रेडियो पर बुकिंग के लिए एफएम के अलावा आप सुन सकते हैं www.awaazfm.com पर स्पॉन्सर कीजिए शब्द कीर्तन भजन या कोई भी हिंदी व पंजाबी प्रोग्राम बनाइए अपने बिजनेस की पहचान दुनिया के कोने कोने में

0: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: Lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom.
3: Hello, you beautiful people. My name's Sunny, our host, The Devil Rises. So, every Saturday from 2 to 4, only on Awaz FM 99.8. Remember to tune in. Don't miss it.

0: ये एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
1: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
2: Awaz FM is supporting local radio.

0: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ एफएम के साथ

0: इस गाना माड़ी पसंद नहीं, माड़ फेवरेट गाना माड़ा।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.

0: Oise FM, supporting local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.
1: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: I am a big fan, long time listener, first time caller.
4: You certainly are. You certainly are.

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: Today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio. The medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@awaazfm.co.uk.
4: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
6: Every Saturday at 5, it's the Winchester Talking Newspaper on Awaaz FM.
7: दोस्तों मैं हूं सीमा सरगम मेरा प्रोग्राम आवाज खैरियों की क्लब सुनना न भूलिए जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए खैरियों की गीत पेश किए जाते हैं अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें नंबर है 07784691440 रिमेंबर आवाज खैरियों की Club every Sunday, 6 to 8 p.m.
8: Hop on, the Retro Rickshaw is here and is taking you on a ride to the greatest hits of all time. 90s Bollywood bangers by Bombay Vikings and Kumar Sanu. Soulful Kannada melodies, classic Marathi tracks, and the freshest Indian remixes. All in one.

बातें सुने और कुछ गीत सुने जो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। तो मैंने सोचा आज क्यों नहीं मेहदी हसन जी को हम लॉलीवुड यानी पाकिस्तानी फिल्मों के कुछ गीत, उनकी कुछ गज़लें आपकी नज़र करें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी उनकी एक गज़ल जो कि है ये फिल्म का नाम था ससुराल, 1962 में बनी थी और इसको गाया था मेहदी हसन ने, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, और माने के ना मानिए रंगीला पे पिक्चराइज हुआ था। तो एंजॉय कीजिए।

जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, बहुत ही प्यारा सा सोज में बसा हुआ ये गीत था। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ एक और फिल्म थी ज़मीन, तो उसमें भी मेहदी हसन ने बहुत प्यारा सा एक गीत गाया था, शिकवा न कर गिला न कर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गीत भी बहुत

0: This is Hours FM, online and on digital DAB radio from Southampton.
1: आप सीमा सरगम को सुन रहे हैं सुहाना सफर के साथ साउथहैम्पटन आवाज एफएम से. आप हमें इंटरनेट पे दुनिया भर में सुन रहे हैं और देखें डीएबी पे तो लोकल जितने भी इलाके हैं अभी सुन रहे हैं. तो आपको मैं पाकिस्तानी फिल्मों के कुछ गीत जो कि मेहदी हसन की आवाज़ में वो सुना रही हूँ. तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं. हमें कोई गम नहीं था तेरी आशिकी से पहले. ये फिल्म थी शब खैर और

रसगीत सुना, शब बख़ैर फिल्म से। और अब मैं एक और फिल्म की तरफ चलती हूँ, ये है गज़ल। जी हाँ, पाकिस्तानी फिल्म गज़ल, और बहादुर शाह जफर की ही ये गज़ल है जो कि मेहदी हसन ने गाई थी। और मेरे ख्याल में बहुत लोग इस गज़ल को बहुत शौक़ से गाते भी हैं और सुनते भी हैं। जी हाँ बिल्कुल, बात करनी कभी मुश्किल मुझे ऐसे तो न थी।

ये है सुहाना सफर और मैं हूँ सीमा सरगम और आपको मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरी सन के कुछ गीत सुना रही हूँ, कुछ गजलें सुना रही हूँ। तो ये अगला गीत जो मैंने आपके लिए चूज़ किया है वो है बीते हुए कुछ दिन ऐसे थे। वो फिल्म का नाम था तुम ही हो महबूब मेरे और इसमें एक्टर थे वहीद मुराद और दीबा और बहुत से, लेकिन मुझे आज भी ये सीन नज़र आते हैं, बहुत ही खूबसूरत थे। रंगीन फिल्में शुरू हो गई थी और आप इस गीत को एंजॉय करें, बीते हुए कुछ दिन ऐसे थे।

बीते हुए कुछ दिन ऐसे थे तन्हाई जिने, बिल्कुल तन्हाई में ही ये सब यादें आती हैं। लेकिन जब तन्हाई नहीं होती तो कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आके रुला देते हैं। तो इसी पे हो जाए मेरी हसन की एक गज़ल, कैसे कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते हैं। जी हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं।

ये अगला गीत मैंने एक बहुत ही प्यारी फिल्म से चूज़ किया है, पिया मिलन की आस। तुम्हें देखूं तुम्हारे चाहने वालों की महफिल में, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। और मोहम्मद अली जो कि मैं कहती हूँ बहुत हैंडसम एक्टर थे अपने ज़माने के, तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी तस्वीरें उनकी फिल्में आज भी हैं, तो हम उनको देखते हैं उनकी एक्टिंग को समझते हैं, जैसे हम दिलीप कुमार की इज़्ज़त करते हैं बिल्कुल उसी तरह की इज़्ज़त हम मोहम्मद अली को देते हैं, पाकिस्तानी एक्टर। तो ये है तुम्हें देखूं तुम्हारे चाहने वालों की महफिल में, ये इस प्रोग्राम का आखिरी गीत है। आखिरी गीत इसलिए कह रही हूँ कि इसके बाद मैं बॉलीवुड की कुछ गीत आपको सुनाने वाली हूँ।

ये मदहोश करने वाली आवाज़ हेमंदा की थी और फिल्म थी प्यासा, बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये। तो उसके बाद एक और गीत की तरफ बढ़ते हैं, सुन जा दिल की दास्तान। जी हाँ, ये फिल्म जाल की गीत है और फिल्म में देवानंद थे। हाँ, देवानंद पे ये पिक्चराइज हुआ था, तो आप इसका मजा

ये सुहाना सफ़र है और मैं हूँ सीमा सरगम, आवाज़ एफएम से मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आपको गीत सुना रही हूँ, हेमंदा के बहुत प्यारे प्यारे से गीत। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ। हाउस नंबर 44 फिल्म का नाम था और देवानंद पे पिक्चराइज हुआ ये गीत।

इस गीत के साथ ही मैंने सोचा इसी फिल्म का हाउस नंबर 44 का एक और गीत भी आपको सुनाऊं। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे

0: How do you say it? A was? Or a was?
1: आप सीमा सरगम को सुन रहे हैं सुहाना सफर के साथ आवाज FM साउथहैम्पटन से। तो अभी हेमंत कुमार के कुछ गीत आपको सुना रही हूँ। तो मैंने अगला गीत जो आपके लिए चूज किया है वो है जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। अनारकली फिल्म का नाम था, प्रदीप पे ये पिक्चराइज हुआ था, साथ में वीना रॉय भी थी।

जिंदगी प्यार की तो चार कड़ी होती है। तो इसी के साथ एक और नगमा जो कि फिल्म शर्ट से लिया गया है, 1954 की ये फिल्म थी, ना ये चांद होगा।

हेमंत कुमार का एक और गीत फिल्म लगान से 1955 की ये थी फिल्म बहाए चांदनी आंसू। आप ये गीत सुने, बहुत दिनों से नहीं सुना हुआ।

0: From Wolston to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Hours FM.
1: मैं हूँ सीमा सरगम और आपको आज सुहाना सफर पे हेमंत कुमार के कुछ गीत सुना रही हूँ और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। तो ये गीत, जो अगला गीत है, ये फिल्म इंस्पेक्टर से है। 1956 में ये फिल्म बनी थी और पिक्चराइज हुआ था अशोक कुमार पे। दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा, आप इस गीत का मजा लें।

0: हो जाए दिल छोड़ कोई ऐसा,
1: दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा। अब इसके बाद मैंने एक शोक सा नगमा लिया है, वो भी हेमंत कुमार की आवाज़ में है। जी हाँ बिल्कुल, वो ऐसे प्यारे प्यारे नगमे भी हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो है अपना दिल तो आवारा, और देवानंद पे ये पिक्चराइज हुआ था, 16 साल फिल्म का नाम था। तो देवानंद ने फिल्मों में कमाल किया, क्योंकि हेमंत दा की आवाज़ उन्हें बहुत ही सूट की। तो ये प्यारा सा नगमा है अपना दिल तो आवारा।

0: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pairtree, this is Hours FM.
1: हेमंदा की आवाज में मैंने आपके लिए एक और गीत चूज किया है, न तुम हम

तो ये अगला गीत जो है ये है जब जाग उठा इंसान, तो ये भी हेमंदा की आवाज़ में है। फिल्म बिन बादल बरसात, और ये पिक्चराइज हुआ था बिस्वाजीत पे।

0: वफा
1: जी जाने वफा।
0: हो मैं मर गया। अगर मैं जाने वफा के दर्जे पे पहुंच गया हूं तो बस और कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी का मकसद पूरा हो गया।
1: सच? जिंदगी का मकसद पूरा हो गया?
0: हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं फजाओं में उड़ रहा हूं, आसमानों में, ऊपर ऊपर और ऊपर।
1: आसमानों में? आसमानों में तो मुझे उड़ना है शाहीनों की तरह।
0: आसमानों में तुम्हारा उड़ने का ख्वाब जरूर पूरा होगा। हम दुनिया देखेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, जहाज हमें उड़ाकर दुनिया के कोने कोने में ले जाएगा।
1: लेकिन लेकिन मुझे तो अपना जहाज उड़ाना है अपने वतन की फजाओं में।
0: मैं समझा नहीं।
1: जल्दी समझ जाओगे। बस बस तुम दुआ करो परवेज, मेरा अल्लाह, मेरा रब मेरी दुआ सुन ले।
0: मुझे बस अब और कोई दुआ नहीं करनी, बस अब जल्दी तुम्हें अपने घर ले जाने की दुआ के अलावा बस।
1: अच्छा,
0: मेरा दिल चाहता है वफा, मेरा दिल चाहता है कि...
1: हाँ हाँ बोलो, क्या चाहता है दिल?
0: दिल ये चाहता है अभी इसी वक्त, इसी लम्हे, इसी साल तुम्हें छुपा कर अपने साथ ले जाऊं। अब और इंतजार नहीं होता है।
1: ए मिस्टर, ख्वाबों से वापस आइए, इंतजार तो करना पड़ेगा, इंतजार में ही तो लज्जत है।
0: मेरी जान पे बदी है, तुम्हें शरारतें सूझी है। मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ और अपनी वफा को लेकर।
1: वफा? वफा ऐसे नहीं मिलती।
0: फिर कैसे मिलती है?
1: वैसे जैसे लैला को मजनू, सोनी को महीवाल और हीर को रांझा मिला था।
0: ऐसी बातें मत करो वफा, मेरा दिल डूब जाएगा।
1: अच्छा चलो फिर मैं तुम्हें अनारों का जूस पिलाऊं, तुम्हारा दिल डूबने से तो बचेगा ना। आ जाओ
0: वफा,
1: आ जाओ ना, उठो।

0: देखो रजा के अब्बा, अपनी फातिमा कैसे बुखार से तप रही है। हाय
1: तो ये लोके इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाती, अब आधी रात को इसे कहाँ लेकर जाऊँ?
0: डॉक्टर? किस डॉक्टर के पास ले जाती मैं? कौन सा डॉक्टर मुफ्त दवाई देता है? घर में फाके दवाई के पैसे कहाँ से लाती मैं?
1: तू ही बता राबिया, क्या करूँ? दो दो जगह मेहनत करता हूँ, हड्डियों का सारा पानी दे डाला है मैंने, नुचड़ गया है मेरी हड्डियों से, फिर भी चेहरों की ताजगी ना ला सका, बाग हरा ना हो सका।
0: पता नहीं नवाज, तू की बुझारता पान लग पे है। मुझे बताना घर कैसे चलेगा? घर में पुक्के डेरे हैं, उत्तो चार बच्चियों का साथ। हाय
1: पलिए लोके, मैं तो जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। आज वो रियाज ने मेरी मुलाकात उस्ताद बाले से करवाई है।
0: उस्ताद बाला? कौन उस्ताद बाला? मैं नहीं जानती।
1: जानता तो खैर मैं भी नहीं था, गड्डियों का बड़ा बड़ा मैकेनिक है।
0: फिर
1: ये कि मैंने सोचा है अपने रजा को काम सीखने के लिए बिठा दूं, चार पैसे भी आएंगे, काम भी सीख लेगा।
0: ये तू क्या आख रहा है रजा के अब्बा? मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। हाँ, रजा को पढ़ना है, उसे बहुत बड़ा अफसर बनाना है मैंने।
1: वो कहां से बनाना है बड़ा अफसर, अभी तो स्कूल में है। चलो ज्यादा खर्चा नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? मेरी बात मान लो।
0: ना ना ना, मुझे तेरी बात नहीं सुननी है ना माननी है। मैं खुद लोगों के घर में काम कर लूंगी, पर मेरा रजा पड़ेगा।
1: और तू अगर लोगों के घरों में काम करेगी तो बाकी तीन मासूमों को कौन संभालेगा? पूरे घर का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा।
0: मैं किस तरह इस मासूम को अपने जिगर के टुकड़े को मैकेनिक के शिकंजे में दे दूं, उसके हाथ से कलम दवात लेकर गंदे धुएं ग्रीस और तेल के कालक माल दूं? मैं कैसे अपने हाथों रजा के अब्बा, मैं उसको मैकेनिक के जुल्म सहने के लिए कैसे रुखसत करूं?
1: फिर तू ही बता रजा की माँ, इसके सिवा और क्या चारा है? अगर एक बच्चे की मेहनत से घर के हालात बेहतर हो जाएं, तो बाकी बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। ये घाटे का सौदा नहीं है पलियलों के।
0: लेकिन मैं माँ की ममता को कैसे समझाऊं नवाज? वो नहीं मानती मेरा लाल। कैसे कैसे उस्ताद के गाड़ी वालों के रवैये बर्दाश्त करेगा? हैं?
1: तू फिक्र ना कर राबिया, कुछ महीनों की ही तो बात है, मैं उसे जल्द अपनी वर्कशॉप में डाल दूंगा। ऊपर से अपने रजा ने 8 जमातें पास कर ली हैं, आगे पढ़ना चाहेगा तो वर्कशॉप के साथ साथ पढ़ भी लेगा।
0: ओ खुदाया, ये कैसा इम्तिहान है! मैं अपने खून मासूम जिगर के टुकड़े को कैसे जुदा कर पाऊंगी? कैसे? या अल्लाह, मेरी मदद कर, मदद कर मालका, मदद कर।
2: अबू, अम्मी, अम्मी, अबू!
3: क्या हुआ वफा बेटा, कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर है?
2: हाँ हाँ अबू, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अम्मी किधर है?
4: अम्मी आ गई मेरी जान। हाँ बोलो, क्या खुशखबरी है?
2: अम्मी, अबू, मेरी सिलेक्शन पाक फिजाइया के लिए हो गई है। मैं जहाज उड़ाऊंगी अपने वतन की फिजाओं में, वतन की हवाओं में, और अपने वतन की हिफाजत के लिए।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई डॉटर।
4: वफा बेटा, ये तू क्या कह रही? तुम्हें तो अब अपने घर जाना है खैर से। तुम्हें पता है ना, परवेज के घर वाले जल्दी से जल्दी रुख्सती मांग रहे हैं।
2: अम्मी आप फिक्र ना करें, परवेज से मैं खुद बात कर लूंगी।
4: क्या बात कर लोगी तुम परवेज से? ये तुम बाप बेटी पता नहीं कौन से उल्टे सीधे प्लान बनाते रहते हो।
2: अम्मी आपको क्या हो गया है? आप अपनी बेटी की खुशी में खुश नहीं हैं?
4: मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है कि तुम जल्दी से जल्दी अपने घर रुखसत हो जाओ, फिर जो चाहे वहाँ जाकर करो।
2: कहाँ जाकर अम्मी?
4: जहाँ तुम्हारा मियाँ है। और कहाँ? माशाल्लाह इतना बड़ा तुम्हारे मियाँ का बिजनेस अमेरिका में है, किसी चीज की कमी नहीं है, और तुम यहाँ नौकरी के चक्कर में हो।
2: ये नौकरी नहीं अम्मी, मेरा ख्वाब है। ये मिशन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है।
3: शाबाश मेरी बेटी, मेरी वफा, मुझे तुम पर फख्र है।
4: रहने दें आप, आपके ही इस तरह के बेजा एप्रिसिएशन ने इसे खराब किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस चंद महीने बाकी हैं, दोनों सुन लो, अपने मियाँ के पास जाकर जो चीज चाहे करना।
2: अम्मी अबू, अबू आप ही अम्मी को समझाएं ना प्लीज।
3: बेटा ना ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता समझाने वाला। बहरहाल कुछ वक्त तो मैं कोई रास्ता निकालता हूँ।
2: थैंक यू अबू जी, थैंक यू सो मच।
1: उस्ताद जी, ये मेरा मासूम बेटा रजा।
3: जी जी,
1: हमने कभी इसको तत्ती वाह नहीं लगने दी। आप इस पर शफकत फरमाइएगा, बस मजबूरी यहाँ ले आई है।
3: बाबू जी तुसी फिक्र ना करो, उस्ताद बाला अपनी शिकिरदा को अपनी औलाद की तरह रखता है।
1: जी जी,
3: लेकिन अगर तुसी नहीं चाहोगे तो मैं आपके पुत्र की तलीम का खर्चा चुक सकता हूँ। जहां तक ये अपने पुत्र अपना रजा पढ़ना चाहे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, मैं चाहता हूँ कि ये कोई हुनर जल्दी से सीख ले ताकि घर से फाके खत्म हो।
3: चलो जिस तरह तुम्हारी मर्जी, पर अपने रजा को पूछ लेने ना कि अगर ये पढ़ना चाहता नाल नाली दी पढ़ाई दा भी इंतजाम कर लिए। और क्यों रजा पुत्र, काम के नाल पढ़ाई कर लोगे? लवी गलत सवाल हो गया, अनपढ़ ना। पुत्र ये दसो कि पढ़ाई के साथ काम कर लोगे?
0: जैसे आप राजी, मेरे अम्मी अब्बा जी राजी, रजा भी राजी जी।
3: बच्चा नहीं लगता है, प्रोफेसर है, पूरा प्रोफेसर है हुने तो।
1: बस उस्ताद जी, अब ये मेरी अमानत है आपके पास।
3: अल्लाह की अमानत है बाबू जी, सब अल्लाह की अमानत है।
1: इजाजत उस्ताद जी, इसका ध्यान रखना।
3: फी अमानुल्लाह, फी अमानुल्लाह। इदा मेरा तेरा सबदा सोना अल्लाह निगेबान है।
1: क्या बात है पलिया लोगे, नींद नहीं आ रही?
0: नींद कैसे आए? हाय मुझे रजा के बाद, तुझे तो पता है ना रजा मेरे बगैर सोता ही नहीं था। पता नहीं मेरा रजा, मेरा लाल किस हाल में होगा।
1: ओ फिकर ना कर तू राबिया, उस्ताद बाला बहुत अच्छा इंसान है। पूरी वर्कशॉप में सिर्फ वही है जिसके पास लोग अपने बच्चे बिला खौफ छोड़ जाते हैं।
0: लेकिन मेरा रजा तो बहुत ही नाजुक, बहुत ही मासूम है ना, बिल्कुल कच्चे कांच की तरह। पता नहीं उसने खाना भी खाया है कि नहीं। कहता होता था अम्मी पहला निवाला आपका, दूजा अबू का, फिर छोटे पाइयों का, और फिर मेरा। हाय कैसे भूल जाऊं, कैसे ये सब कुछ एकदम।
1: हाँ पलिए लोके, बात तो तेरी सच है। हर सांस के साथ याद आता है। जिधर नजर डालूं ऐसा लगता है वही है।
0: मेरी बात मान रजा के अब्बा, जवर जाके मेरे रजा को वापस ले आ। मैं नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी रजा के बगैर। रजा के बगैर मेरी सांसें रुकती हैं, हाय दिल डूब जाता है। मैं डीगर वेला महसूस कर रही हूँ। हाय रब्बा।
1: अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा तो फिक्र ना कर, मैं सुबह जाता हूँ उसे लाके मिलवा देता हूँ तुझसे। फिर जो फैसला दोनों माँ बाप करोगे हमारा ही होगा ना, वही अल्लाह की मर्जी है, समझ कर कबूल कर ले।
0: सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं, सुबह तक कैसे वक्त गुजरेगा मेरा।
1: अभी अभी रात बहुत हो गई है, सुबह का मेरा तेरे साथ वादा है, मैं जरूर ले आऊंगा उसे।
0: फिर उस वादे के टाइम तक मुझे जागना है।
1: ना ना ये ना कर, सो जा, सुबह में अभी बहुत देर है, सुबह में बहुत देर है अभी।
0: करीब दूर कुछ नहीं है, बस मिसाल का इंतजार, करीब और दूर के मैं नहीं बदल देता है। हाय मैं अब सुबह तक इंतजार करूंगी, सुबह का इंतजार रहेगा मुझे।
1: चल चल सो जा, अल्लाह बेहतर करेगा।
0: आमीन, मेरा लाल मिला दे। हाय रब्बा।
4: देख वफा बेटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो।
2: अम्मी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपकी हर बात समझ रही हूँ। मैं कब किसी बात से इनकारी हूँ?
4: ये इनकार नहीं तो और क्या है। मैंने सोचा था बस अब कुछ महीनों में शादी की तैयारियाँ मुकम्मल करके अगले साल तुम्हारी धूमधाम से रुख्सती करूँगी। तुम हो के तुम्हें तो पर लग गए, ऊंची उड़ान उड़ना चाहती हो तुम।
2: ऊंची उड़ान कोई बुरी बात है अम्मी?
4: अपनी मंजिल छोड़कर नई उड़ान उड़ने वाले कभी कभी मुंह के बल गिरते हैं।
2: मैं शाहीनों के काफले का हिस्सा बनी हूँ माँ, और शाहीन कभी मुंह के बल नहीं गिरते। इनकी हर उड़ान निराली होती है। ये जीते हैं तो शान से, ये मरते हैं तो भी शान से।
4: वफा वफा मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मेरी अकलौती औलाद हो, अकलौती बेटी हो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कितने अरमान हैं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? काश काश तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकती।
2: अम्मी अम्मी, मुझे सब पता है, मुझे आपकी मोहब्बत पर नाज है। आप बहुत बहुत बहुत प्यारी माँ हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके सब अरमान पूरे होंगे, सब। बस बस थोड़ी सी मोहलत।
4: अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें समझा ही सकती थी, बाकी जो जो अल्लाह को मंजूर।
2: ओ मेरी प्यारी अम्मी, लव यू, आई लव यू मॉम, थैंक यू सो मच।
4: लव यू टू माय डॉटर।
5: वो आया जी आया।
6: ओए ओए काका, ओए रजा पुत्र किधर हैं?
5: ओ सास साहब, वो लगता है कोई गाड़ी ठीक कराने आया है, हॉर्न पे हॉर्न ही दिए जा रहा है।
6: ओए काका, ओए पुत्र, ओए बैठ के रमान से रोटी खा। बंदे ये सारी भज दौड़ जो है ना पापी पेट ले करता, और ये उस्ताद बाल्य का असूल है कि जब खाना लग जाए तो फिर सारे काम बंद, जदों तक आखिरी बुरकी अपने टिकाने ते ना पहुंच जाए कोई काम नहीं है।
5: ठीक है उस्ताद साहब।
6: वेट सर पुत्री की, उस्ताद साहब लगाए रखते हो, बाकी सारे उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी, और तुम उस्ताद साहब के नवा काम शुरू करता है तू।
5: उस्ताद साहब बस तू मेरा दिल करता है कि मैं आपको ना साहब कहूं।
6: ओ ना भाई, साहब तो तू है पुत्र। रजा तू ये गड्डियां ठीक करने के लिए नहीं बना, तू तो उस्ताद वाले का रजा साल है, रजा साल है। वो मैंने तेरे जी असली का मंद ताबेदार ईमानदार बच्चा अपनी पूरी हयाती च नहीं तकिया।
5: उस्ताद साहब आप इतने अच्छे हैं ना कि आपका हुक्म आंखें बंद करके मानने को दिल करता है।
6: ओए ओए कूड़ा, ओए शोखिया, ओए बेखिया, ओए ओए राजू, ओए दानी पुत्र, ये रजा होर तेला दिया गल्ला नहीं करता। मैं तो इन प्रोफेसर नहीं कहता, प्रोफेसर समझना भी है, प्रोफेसर साहब जी।
5: उस्ताद साहब मैं तो आपका स्पास गुजार हूँ जी।
6: एक ही किया प्रोफेसर तूने? अच्छा तू छ जो भी किया होएगा ना वो ठीक ही होएगा। वो दस तेरे नाल दे तेरे साथी जेड़े वो कैसा पढ़ रहे हैं?
5: उस्ताद साहब आपके बेटे राहील और नदीम तो मेरे भरा हैं जी, माशाल्लाह बहुत दिलचस्पी से पढ़ने लगे हैं पढ़ाई।
6: सारा सारा सूब दस रहे प्रोफेसर रजा साहब। जदों का तेरे नाल उन्होंने उठना बैठना शुरू होया ना, उन्होंने तो रंग ढंग ही बदल गया। हर वेले तेरे गाउन गाँवते ने, रजा भाई की ये बात, रजा भाई की वो बात।
5: साहब हम इंशाल्लाह ना सारे भाई आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और जरूर पास होंगे जी।
6: अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। और मेरे प्रोफेसर पुत्र सच पूछे ना, हम तो रही नदीम तो ज्यादा मैनू तू अजीज हो गया। लगता है रजा साहब तू मेरा सक्का तीजा ते सब नाल चंगा ते वड्डा पुत्र है।
5: उस्ताद साहब बड़ी मेहरबानी। उस्ताद जी उस्ताद साहब एक छोटी सी दरख्वास्त करनी थी आपसे।
6: पुत्र दरख्वास्त मैं कोई मुंशी है? तू हुक्म कर मेरा बेटा है, मेरा रजा साहब।
5: उस्ताद साहब आप मुझे ना ये साहब ना कहा करें, मुझे शर्मिंदगी होती है जी।
6: ओए प्रोफेसर रजा पुत्र मैं तेरा उस्ताद बल्कि तेरे अंकल, अगर तुझे प्रोफेसर और साहब कहने से मेरी रूह राजी होती है तो तुझे तेरा की जानता है? ये मेरी जबान तो नहीं दिल तो साहब निकलता है, तो मैं तेनू साहब ही वेखना चाहना।
5: ओला करीम आपको लंबी हयाती दे जी, जिस तरह आप खुश आपका ही अदना सा शाकिर्द भी खुश जी।
6: ओए जिंदा रहो मेरा बच्चा, ओए मेरे रजा, मेरा प्रोफेसर ते मेरा साहब।
2: याल्ला ये सुबह सुबह एक पार वाले दिन कौन आ गया? आई परवेश आप यूं अचानक बगैर इतला बगैर बताए क्यों? क्या मेरे चेहरे को गौर से क्यों देख रहे हो?
1: दिल करता है वफा बस तुम्हारा चेहरा देखता जाओ, देखता जाओ, बल्कि भी ना चुप करो।
2: चले हटें, क्या कह रहे हैं?
1: हटूं कहां, हटने के लिए तो नहीं आया जनाब।
2: आप कम से कम इतला तो करते अपने आने की, मैं आपको एयरपोर्ट खुद लेने के लिए आती।
1: इतला दे देता तो फिर तुम्हारे चेहरे की ये खुशी, ये खूबसूरत रंग और सरप्राइज, मैं मोहब्बत की लहरें कहाँ देख पाता, कहाँ नसीब होती।
2: अच्छा चलें बस आई, जल्दी से नाश्ता तैयार है, फ्रेश हो जाएं, मिलके नाश्ता करते हैं।
1: मैं फ्रेश ही फ्रेश हूँ मेरी जान, बल्कि तुम्हें देखकर तो मैं सुपर फ्रेश हो गया हूँ।
2: वैसे ये अचानक आपने तो अमेरिका से पाकिस्तान ऐसे समझा हुआ है जैसे लाहौर से गुजरा वाला।
1: तुम क्या जानो वफा ये दूरी क्या चीज है, ये जो 6 महीने गुजरे हैं ना तुम्हारे बगैर लगता है 6 सदियां गुजर गई है। ऊपर से इंतजार, कब तुम्हारी ये ट्रेनिंग खत्म होगी?
2: ये सब आपकी ही तो रजामंदी से किया है।
7: मुझे तुम्हारी हर ख्वाहिश असीर से वफा, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? यह पुर्बत मांगता है मुकम्मल पुर्बत।
8: बस 2 साल और की तो बात है, फिर
7: क्या? हाँ बोलो बोलो।
8: फिर खुद समझो ना, फिर में सब कुछ है।
7: अच्छा मेरी जान, अब जल्दी से अपनी फिजाइए की ट्रेनिंग मुकम्मल करो और मेरे साथ भी उड़ो।
8: तुम्हारे साथ ही तो उड़ना है इन पाक रंगीन फिजाओं में।
7: मैं समझा नहीं।
8: समझ जाएंगे समझ जाएंगे, जल्दी क्या है, अब तो बस ये समझो कि हमने एक साथ उड़ना है, एक साथ।
7: अल्लाह वो वक्त जल्दी लाए, बहुत जल्द।
6: की मिल गया तुम्हें इस अखबार में जो यूं चीख रहा है?
9: उस्ताद जी ये देखें, ये अपने रजा की तस्वीर है इस अखबार में।
6: रजा साहब की तस्वीर? लिखा क्या है? रजा नवाज ने इंटर मीडिएट में पहली पोजीशन आ, और मैं सदके जावा। ओए मुबारक, ओए ओए मेरे बच्चों, ओए मेरे शिकिरतो, ओए मेरे साथी, मेरे बच्चों, रजा साहब ने सब तो ज्यादा नंबर लाए।
9: मुबारक हो उस्ताद जी, मुबारक हो।
6: पर ये अपना रजा साहब है किथे?
9: इस वक्त तो वो जी है, ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं।
6: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, आ जांदा अभी थोड़ी देर में। ओए इधरा, ओए रिया, ये एले पर, ये पर ठहर जा, सारे पैसे ले जा, मठियाई ले के आ, ते सारी वर्कशॉप च सब नु तकसीम कर। आज मेरा रजा साहब सब तो अग्गे हो गया, इन्ने ढेर सारे नंबर लभी अज ते उस राज बाला भी खुशी नाल मेरा दिल करदा धमाल पावा।
10: उस्ताद साहब अस्सलामु अलैकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम। ओए ओए रजा साहब, ओए रिया, कुटके लेवी। रजा साहब तूने अपने उस्ताद भाले का सर फखर से बुलंद कर दिया, पहला नंबर। ओए मेरे रजा साहब ही पहला नंबर। वाह वाह।
10: ये ले उस्ताद साहब, मुंह मीठा करें।
6: ओए रजा साहब,
10: उस्ताद साहब, एक मेरे पास होने का, एक भाई राहील के और एक भाई नदीम के पास होने की खुशी में।
6: राहील ते नदीम पास हो गए? वाह मेरे मौला, तीन तीन खुशियां एक साथ। उस्ताद बाला, तू तो इस काबिल है ही नहीं सी कि थे पांच जमातों पास बाला, और कि थे ये इल्म दे चिराग।
10: उस्ताद साहब नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मुझे कहा था कि कभी उदास नहीं होना, कभी रोना नहीं है।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, पुत्र मेरे साहब जो कहेंगे ना वो ही होगा। रजा साहब एक खुशी दे अथरू है, खुशी दे, ये शायद मेरी अखियां जो बाहर ना आंदे, पर तेरी वखरी सब तो वड्डी कामयाबी ने ये अथरू जेड़े मेरी अखियां चो खुशी नाल बाहर कट दिते है।
10: उस्ताद साहब ये सब आपकी मेहरबानी और आपकी मदद से हुआ है।
6: सारियां मेहरबानियां, सारियां मददां अल्लाह सुन दिया। बस अपना आज तो तू वर्कशॉप ते ट्यूशन पढ़ाना मुकम्मल बंद।
10: उस्ताद साहब ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा?
6: ओयो जी तू फिक्र ना कर, तू बड़ा अफसर बनना है, बड़ा अफसर रजा साहब। वो जिथे मैं रहील ते नदीम दी तालीम ते खर्च करांगा, क्या मैं अपने रजा साहब अपने सात पुत्र की तलीम का खर्चा नहीं कर सकता?
10: लेकिन उस्ताद साहब
6: बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं, अपना रजा साहब आज तो वर्कशॉप आना बंद।
10: पर उस्ताद साहब आपको मिलने के लिए तो यहाँ आ सकता हूँ ना।
6: बारी पुत्र एक करोड़ बारी और तेरे नाली दसारियाँ राउंड का रजा साहब। पर तू अगर मैनू मिलन ना आया ना तो फिर तेरे उस्ताद जी ने की करना है?
10: ठीक है उस्ताद साहब, मैं ये खुशखबरी अम्मी और अब्बू को भी सुनाऊं।
6: बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी ना निकलते। ए, मेरी वल्लों मठिआई अपने अम्मी अब्बू ते छोटे भाइयों लई। डर रुक तुहाडे सारिआं दे कपड़े भी ए भी लै जा।
10: बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद साहब, बहुत शुक्रिया।
3: पापा, मेरी बच्ची, तुम्हें कैसे बताऊं कि आज मैं कितना खुश हूं। तुमने तो वो कर दिखाया जो बेटे भी ना कर सके।
8: अब्बू, आपने जो लम्हा लम्हा सपोर्ट किया, ये सब उसी का हौसला और हिम्मत थी कि आज मैं मुकम्मल पायलट बन गई।
3: मैं अब इत्मीनान से कह सकता हूँ कि मैंने वतन की बेटी वतन की खिदमत के लिए तैयार करके लौटा दी।
8: इंशाल्लाह आपकी ये बेटी अपने वतन की खाक, अपनी मट्टी की मोहब्बत को अपनी मंजिल बनाएगी। अम्मी अम्मी, आज आप इतनी खामोश क्यों हैं?
4: पहले तुम दोनों बाप बेटी ये जज्बाती सीन खत्म कर ले तो फिर मेरी कोई गुंजाइश बनेगी ना।
8: अम्मी आप तो सबसे अहम हिस्सा हैं, गुंजाइश वाली कौन सी बात है? आप खुश नहीं है कि आपकी बेटी को अल्लाह ने इस सरजमीन की खिदमत के लिए चुन लिया है?
4: मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बेटियाँ वालदैन की इज्जत होती है, खुसूसन माओं का फख्र होती है। लेकिन बेटियों का असल काम अपने घर की खिदमत है।
8: अम्मी वतन की खिदमत घर की खिदमत से तो नहीं रोकती ना?
4: देखो वफा बेटी, मैं तुम्हारे सवालों के सामने बेबस हूँ, बल्कि तुम्हारे जवाब मुझे लाजवाब कर देते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैंने तुम्हारी सभी बातें मानी हैं। अब तुम मेरी बात मान लो और जल्दी से अपना घर बसा लो।
8: अच्छा अम्मी जान, आप जब चाहें जैसे चाहें अपना शौक पूरा कर लें, मैं तैयार हूँ।
4: सच? तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, तो बस फिर ये समझो कि ये नेक काम हुआ सो हुआ।

0: मिले, नहीं तो तेरा ये उस्ताद मुक जाएगा।
1: उस्ताद जी, वो फैसल कोई खबर लेके नहीं है?
0: दो तीन बारी गया है मेरे रजा दिखाते, करते ताला लग गया है। मैंने उसे कहा था कि वह हमसायों से पता करके आए, हो सकता है आज कोई खबर लाया है।
2: उस्ताद जी, सलाम अलैकुम।
1: आगे जी।
0: वालेकुम सलाम। कुछ पता लग गया मेरे रजा दा, मेरे साहब दा?
2: हाँ उस्ताद जी, लग गया। सारे पिंडी गए हुए हैं। हाँ, उसके अब्बा जी को वहाँ भिजवा दिया ना दफ्तर वालों ने, इसलिए।
0: पिंडी? ओए, तू की कह रही है? हूँ कैसे मुलाकात होगी रजा से? वाह मेरे साहब, वो जाती दफा कोई पता दे जाता, कोई मोबाइल पे राबता कर लेता अपने उस्ताद से। साहब, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पुत्र समझ लिया था, और तू कहीं और चला गया बिना बताए, बगैर रास्ते के।
1: मैं क्या है ना उस्ताद जी, ऐसे ही है दुनिया, जब काम ना मिले ना तो फिर बताने और रास्ते की क्या जरूरत है। और कैसी अच्छी जगह पे लग गया होगा जाके, काम कर रहा होगा वहाँ पे, कहता होगा लोगों को पता ना चले कि उस्ताद बाले के पास गड्डियां ठीक करने का काम करता था।
0: राजू, यह गल न कर, मेरा दिल होर ना दुखा। मेरा दिल नहीं मानता, मैनु यकीन है कि वो किसी न किसी दिन जरूर आएगा, मुलाकात होगी। मैं अपने सोने रब तो बढ़िया दुआवां मंगांगा।
1: अल्लाह आपकी दुआएं सुन ले जी उस्ताद जी।
0: आमीन आमीन, अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे।
3: अब तो खुश होना परवेज।
4: इतना खुश लगता है मुझे, पूरी दुनिया की खुशियां मिल गई है।
3: महीना गुजर भी गया और छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं।
4: क्या महीना? नहीं नहीं नहीं, अभी तो लगता है कल ही हम बंधन में बंधे हैं, और छुट्टियां इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? तुम और छुट्टियां ले लो ना।
3: और छुट्टियां? ये कैसे मुमकिन है? आपको पता है कितनी अहम जगह पर ड्यूटी है मेरी?
4: मुझे कुछ पता नहीं, बस तुम और छुट्टियां ले लो और मेरे साथ चलो बस।
3: परवेज, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे कैसे मैं आपके साथ चलूं? ये सब मेरे बस में तो नहीं है ना।
4: तुम्हारे बस में नहीं है तो मेरे बस में तो बहुत कुछ है ना। मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ भी लेके जा सकता हूँ।
3: जबरदस्ती? ये क्या कह रहे हो तुम?
4: मैं
3: ओके, इजी हो जाओ।
4: मैं कैसे इजी हो सकता हूँ? इतनी देर बाद मिली होती, इतनी जल्दी मैं कैसे तुम्हें यहाँ छोड़ के जा सकता हूँ? सच्ची बात तो ये है कि मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें देखे। तुम किसी और के साथ काम करो, नौकरी करो।
3: लेकिन परवेज,
4: कुछ नहीं समझो, अब तुम्हें मेरी बात मानना होगी, वरना
3: वरना वरना क्या?
4: वरना ये जल्द पता चल जाएगा, तुम्हें पाकिस्तान या मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा।
3: क्या?
4: हाँ वफा, हाँ, पाकिस्तान या मैं। अगर मैं जाने वफा हूँ तो फिर पाकिस्तान?
3: पाकिस्तान ईमान है परवेज, और ईमान के बगैर ना वफा कुछ है और ना जान, और ना ही जाने वफा।
4: इसका मतलब है मैं तुम्हें अजीज नहीं।
3: किसने कहा अजीज नहीं? आप अजीज तर हैं, जान हैं, जिंदगी हैं।
4: तुम मुझे पागल कर दोगी वफा, जान भी कहती हूँ, जिंदगी भी और अजीज तर भी, लेकिन फिर भी तरजीह कुछ और?
3: तरजीह हमेशा ईमान होता है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे।
4: बस बस वफा, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाना है या नहीं?
3: देखो परवेज, कल मेरे ईमान का पहला इम्तिहान है, प्लीज मुझे मत रोको। जाने दो, मेरा आपसे वादा है मैं इस मिशन के मुकम्मल होने के बाद हमेशा के लिए आपके दिल में रहूंगी।
4: तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। इस वादे के वफा होने तक मुझे ये भी मंजूर है। जाओ वफा, जाओ। जब ईमान का इम्तिहान पास करके आओगी ना, तो मुझे अपना मुंतजिर पाओगी। गुड बाय वफा, गुड बाय। हमारा क्या है, तुम्हारा ईमान सलामत रहे।

0: aquí! ¡A policía!
1: ਓਏ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
0: ਅੱਛਾ ਜੀ
1: ਪੁੱਤਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁੱਛ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਹੁਕਮ ਜਨਾਬ
2: ਓਏ ਗਾੜੀ ਕਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ
0: ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਓ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓ ਗੱਡੀ ਕਾ
1: ਓਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬੈਠੇ
3: उस्ताद जी आपसे एक शर्त पे पंचर लगवाऊंगा
1: शर्त की शर्त जी
3: शर्त ये है कि उस्ताद साहब पंचर मैं खुद लगाऊंगा
1: उस्ताद साहब रजा रजा साहब मेरे प्रोफेसर तुम कहां खो गए थे मेरे प्रोफेसर मेरे साहब
3: प्रोफेसर नहीं उस्ताद साहब एएसपी
1: माशाल्लाह मेरा रजा मेरा साहब इतना बड़ा पुलिस अफसर हो गया पर मैं अपने साहब को काम बिठा यहाँ तो कोई ऐसी जगह ही नहीं
3: जगह मैं उसी जगह बैठना चाहता हूँ उस्ताद साहब जिस जगह आपने पहली बार मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल करके बिठाया था
1: मैंने तो अपने साथ अपने रजा को पहली नजर में दिल में बिठा लिया
3: तो बस उस्ताद साहब आज भी वही जगह चाहिए
1: इतने बड़े अफसर को इतने बड़े साहब को अपने नमाने छोटे से दिल में क्या बिठाऊं
3: ना उस्ताद साहब आज मैं जो भी हूँ उस्ताद साहब आपकी शफकत आपकी मदद और आपकी वजह से ही हूँ आप बहुत बड़े उस्ताद हैं बहुत बड़े उस्ताद साहब हैं आप आपका दिल दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत दिल है
1: ना, मेरे साहब ना मैं कहा आप कहा और ये दिल क्या
3: ये दिल मेरे उस्ताद भले का दिल है सब कुछ है जिसने अपने हर शागिर्द को अपनी औलाद की तरह पाला है

0: और फैसल के नाम कर दी है जी।
1: क्या? और उस्ताद साहब आप?
2: मुझे मुझे तो लग रहा नदीम और राहिल ने ये वर्कशॉप के पीछे जगह दे दी है। मैं वहाँ पर अच्छी सी मशीनरी लगा के दे दी है मुझे, और आने वाले शिक्षकों को साफ सुथरे माहौल में काम भी सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी।
1: वाह उस्ताद साहब वाह, आप वाकई अजीम हैं, बहुत अजीम। कोई सोच सकता है मेरे वतन में एक ऐसा मैकेनिक, गाड़ियों का मैकेनिक भी है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, जिसका दिल दूसरों के लिए है।
2: बस मैं तो कहता हूँ मेरे साहब का दिल बहुत सोना है, इसीलिए उसको सब चंगे लगते हैं।
1: कोई दिल उस्ताद साहब मेरे उस्ताद साहब से अच्छा सोना नहीं हो सकता। मेरे उस्ताद साहब का दिल सोने जैसा है, सोने जैसा।
2: बस बस तुम मिल गया ना।
1: सोने जैसा है, सोने जैसा।
2: बस बस तुम मिल गया।

सामीन, आपने तलावती कुरान पाक उसका उर्दू में तर्जुमा सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ एफएम साउथहैम्पटन, आपकी खिदमत में हमद शरीफ पेश करता हूँ। सुराज मनीर, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अकबर। पढ़ते हैं जनाब हाफिज़ फाहिद शाह।

सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरा नाम तेरे नाम का तज़किरा है हर जो। ये पढ़ रहे थे जनाब रिजवान सुमरो साहब। आइए अगली जो हम चीज़ पेश करता हूँ उसका अनवान है, तू रब है जो पालता है कोई शक नहीं जी इसमें। कारी शोएब हुसैनी साहब इस हम चीज़ को पेश करते हैं, समाअत फरमाइए।

वही तो रब है जो सबको पालता है। ये कलाम हमदी आप सुन रहे थे जनाब कारी शोएब हुसैनी। हम जानते हैं कि अभी तक जो माह चल रहा है ये रबीउल अव्वल का है महीना, चंद आखिरी ही दिन रहते हैं और अभी तक जा बजा बर्थ प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाई जाती है, यानी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐलान करता हूँ कि ये कल हफ्ता के दिन 12 सितंबर, आज 11 है, कल 12 होगी इंशाल्लाह, सैटरडे हफ्ते के दिन रज़विया मस्जिद में एक प्रोग्राम रखा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास वक्त हुआ तो ज़रूर तशरीफ़ फरमाएंगे। थोड़ी देर बाद आपको तफसील में बताता हूँ, फ़िलहाल मुबारक देता हूँ जनाब अकबर मुग़ल जो आजकल उम्रा के लिए तशरीफ़ लेकर जा चुके हैं। अल्लाह ताला आपका और आपकी बेगम का उम्रा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उन हस्तियों के उम्रे कबूल फरमाए जो कर चुके हैं या करने जा रहे हैं या इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, हमारी ये दिली दुआ है। आइए आपके नाम अगली ये नातिया कलाम पेश करता हूँ। शहबाज कमर फरीदी साहब पेश करते हैं और ये ऑल द वे जा रहा है जनाब मदीना मुनव्वरा। आका मेरी अखियाँ मदीने में रह गई हैं,

समीन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आइए आपको एक और नासिर सुनाता हूँ। सरकार जैसा कोई आला हो नहीं सकता, यह अनवान है इस अगली नासिफ के। शेर एम बुरहान इस कलाम को पढ़ते हैं।

सरकार जैसा कोई आला हो नहीं सकता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर बुरहान पेश कर रहे थे। सरकार तेरे आने से गुलशन में बहारें आईं। सैयद हसनुल्लाह हुसैनी और उनके साथी ये कलाम पेश कर रहे हैं।

सरकार तेरे जाने तेरे आने के गुलशन में बहारें आई। आप ये कलाम सुन रहे थे जनाब सैयद हसन उल्ला हुसैनी की आवाज़ में। आइए अगला कलाम आपके पेश में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। क्या बात है यार, अहमद साहब बातें भी नहीं सीधी कर सकता। अगला कलाम पढ़ रहे हैं जनाब कारी खालिद हुसैन खालिद। कहते हैं तू शाह खूबा तू जाने जना है तेरा चेहरा उम्मल किताब।

0: 0818-514-5046, or you can email info@oursfm.co.uk.
1: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.

0: जी जी आप आइए जी,
1: आप बताओ मुझे
0: ये बात है, क्या बात है, क्या बात
1: है, क्या प्रोग्राम एंजॉय किया ना जी, मेरे कितने पसंद के गीत प्ले इसमें होंगे।
0: देखे ना साथी, जब करें फरमाइश वगैरह तो किसी ना किसी की फरमाइश तो मिलती है ना फिर।
1: नहीं मिलती है, मुझे तो वही मुराद की याद आ गई सच्ची है। नेक्स्ट वीक एक और गीत आपको मैंने बोलना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: इंसान की बहुत कुछ याद दिलाती है, गीतों के इंसान की यादें जुड़ी।
0: नहीं मैंने तो सब साथियों को कहा जी, बेशक एक नहीं दो बजाने के लिए तैयार हूँ, पर इससे ज्यादा जरा मुश्किल है तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वैसे जरूर।
1: देखें अरे

0: है, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ, सच्ची बात है, ये बात है अपने अपने दिल की।
1: जी जी बिल्कुल,
0: एक से गाने सभी की चॉइस वेरी नाइस है, तो बड़ा अच्छा लगता है प्रोग्राम को, भी चार चांद लग गए हैं ना।
1: जी बिल्कुल जी बिल्कुल, साथ ही आते हैं चार चांद,
0: मैजिक की छड़ी घुमा दी है पूरी तरह।
1: थैंक यू वेरी मच जी, आपके भी
0: किससे भी ज्यादा लोग आपको फरमाइश करने के लिए आए,
1: अब खुदा करे जी देखते हैं
0: वो लोग एयर पे भी आए, दो चार बातें हेलो हाई करें, ताकि आपका भी दिल और गार्डन गार्डन हो जाए।
1: जी वो मैं वैसे अक्सर कहता हूँ की कोई ना कोई आया करे साथी, ताकि लोग ये ना कहें कि कहीं साईं बैठा खुद ही तो नहीं नाम ले रहा।
0: नहीं नहीं, अगर आप आते जो भी एयर पे आए ना, तो आपका हौसला अफजाई होती है प्रेजेंटर
1: की। क्यों नहीं जी, बड़ी बात है, बड़ी बात है, थैंक यू वेरी मच।
0: आपकी बड़ी हिम्मत के दाद देते हो, जो इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग ढूंढ निकाले, आपको इजी हो गया ना।
1: जी देखिए
0: कितना टाइम लग जाता
1: है हमारी,
0: आज दिनेश पोपट ने बहुत लंबा इंतजार किया ना, तो लास्ट वीक मैंने भी 2-2.5 घंटे किया।
1: बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी, कोई बात नहीं, आप पहले
0: पेशेंट होना चाहिए, क्योंकि आपने आपके इख्तियार में नहीं है, टाइम तो लग सकता है ना।
1: जी लग जाता है, लग जाता है, कभी बस आगे पीछे हो जाते हैं, गाने जो है देखने पड़ते हैं।
0: कोई बात नहीं, इंतजार का अपना एक अलग मजा है। थैंक यू सो मच, लवली शो, खुदा आपको हमेशा खुश रखे, अपनी हमारी सब टीम को खूबसूरत।
1: आमीन या रब्बल आलमीन। जी जी,
0: और हमें फिर आपके आने का नेक्स्ट वीक बड़ी शिद्दत से इंतजार।
1: थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच फॉर
1: ओके जी,
0: बहुत शुक्रिया प्रे फॉर एवरीवन,
1: थैंक यू वेरी मच जनाब, मच
0: पसंद, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, थैंक यू,
1: थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। समीन मिसेस शेख, थैंक यू वेरी मच जी, आपने जाते जाते खुदा हाफिज किया, और बड़ा अच्छा लगा जी आपका टेलीफोन करना, और ख़ास तौर पर आपकी शायरी को बहुत पसंद किया जाता है, मैं तो मैं हूँ, सारे लिसनर जो उनको भी बहुत पसंद है, और हर तरफ से आपके थैंक यू की भी टेक्स मुझे आते हैं, लोग पसंद करते हैं इसको, बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पर जनाब हरप्रीत जी, आपने गाने दो भेजे थे, एक तो मैंने आपका सुना दिया है, दूसरा ये आपकी तरफ से जा रहा है जी हम सबको, और मुझे भी जा रहा है, शायद आप मुझे ही इशारन कह रही थी कि अभी ना जाओ छोड़ कर, दिल अभी भरा नहीं। बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया, गाना भी यही है, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ है ये, लीजिए गाना सुनिए।
2: अभी न जाओ छोड़ कर।

प्रीत जी आप सुन रही थी अपना गाना, कहती जी अभी न जाओ छोड़कर, जी अभी कैसे जाना, अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो सिर्फ 10-12 मिनट हुए हैं, 15 मिनट भी नहीं हुए मुझे आए हुए, अभी मैं आपके साथ ही हूँ, जा नहीं रहा हूँ, अभी तो मजा आ रहा है। चलो इसी मजे के बहाने आपको एक अगली गजल सुनाते हैं, फिल्म है हजार दास्तां, मेहदी हसन की ये आवाज है। कहते हैं आंखों से मिली आंखें, दिल दिल से जो टकराया मजा आया, कुछ ऐसी बात है। आपकी खिदमत हाजिर है जनाब, मैं अहमद साईं और यह रेडियो आवाज़ FM साउथहैम्पटन।

दिलों की बस्तियां, मगर भंवर में कश्तियां, ये दो दिलों की बस्तियां, मगर भंवर में कश्तियां, उतारते चले गए, उतारते चले गए, यूं जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले गए, कदम कदम पे हम तुम्हें पुकारते चले गए, पुकारते चले गए।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई। फिल्म थी आग जी, मेहदी हसन की आवाज़ आप सुन रहे थे और ये स्पेशल प्लेट किया था जी रोशनी हुसैन के लिए आप। और आप सुनकर उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद ही आई होगी ये गज़ल। ज़रा अंदाज बदलते हैं वैसे। अगला एक मैंने ड्रामा सीरीज से अगले जो है वो गज़ल ली है मैंने। ड्रामा की सीरीज का नाम है जी मुमताहा। जिन साथियों ने कहीं इसका मुलाहजा फरमाया उनको पता होगा कहानी क्या है, मगर अनुमान कुछ ऐसा है। कहते हैं जी, ऐ जिंदगी ये तो बता, क्या मिला क्या खो दिया। वैसे तो मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, मगर हर एक आदमी को अपनी भी जिंदगी के बारे में तो पता ही है, मगर इत्तेफाक से ये बराबर आ गया। ये ना समझिए कि किसी खास मकसद के लिए लगाया गया। वैसे आवाज़ है नबील शौकत और आयमा बेग की। प्लीज़ डू एंजॉय, नहीं तो मुझे फीडबैक तो आनी चाहिए ना।

समीन आपने ये गाना सुना जी, ऐ जिंदगी ये तो बता क्या मिला क्या खो दिया, नबील शौकत और आयमा बेग की आवाज थी और ये एक प्ले हो गुजरी है जिसका नाम था मुंतहा। जिंदगी के बारे में ही बातचीत चल रही है तो चलो इत्तेफाक से कुछ जिंदगी के कुछ गाने आपको सुना दिए, अगला भी कुछ ऐसा ही आ रहा है और ये फिर जा रहा है रोशनी जी आपको और आप ही की पसंद है। आवाज है जी नीति मोहन और जुबीन नुटियाल, फिल्म है जी सत्यमेवा जयात 2, हिंदी के को अक्षर हैं जी, आगे पीछे हो गए तो माजरत, हाजिर खिदमत है। कुछ अनुमान ऐसा है, तू मेरा पहला जुनून इश्क आखरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू गम है या खुशी है, तू

सभी आप सुन रहे थे गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू जी, नीति मोहन और जुबिन नटियाल की आवाज थी जी, और फिल्म थी जी सत्या मेवा जयाते समथिंग ऐसा था जी टू, आपने सुना जी। अब राजान जी आपके लिए अगला गीत पेश करता हूँ जनाब, नगमा आपकी पसंद का और आप ही की आवाज जो पसंदीदा है मुकेश उसकी है, और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। आ अब लौट चलें, हाजिर खिदमत है।

आते ही जवानी का मौसम बेताब नजर हो जाती है। समीन आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज, फिल्म थी मुलज़िम। अगली गजल पेश करता हूँ, आतिफ असलम की आवाज है। अनुमान कुछ ऐसा है, कहते हैं जी, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। जी मुलाजा फरमाइए।

आए कुछ अबर कुछ शराब आए, उसके बाद आए तो फिर अजाब आए, क्या बात है जी। आतिफ असलम साहब की आवाज में ये गजल आपने सुनी। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM साउथम्पटन से, आपसे मुखातिब है। अगली गजल पेश करता हूँ असद अमानत अली खान का, एक अपना मुकाम है गजलों में। फिल्म सहेली में उन्होंने ये गजल पेश की है। अनवान है, आंखें गजब हैं आपकी और होंठ हैं गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब।

दिल टूट गया मेरा, हाय हाथ से दामन अब तो छूट गया मेरा। ऐसी बात थी जी, अनूप जलोता साहब की आवाज़ और उनके साथी थे। आपने ये गज़ल सुनी। सामीन बता दूं कि आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM साउथहैम्पटन। मैं हूं अहमद साई, आपकी खिदमत में कुछ गाने कुछ गज़लें वगैरह पेश कर रहा हूं। देखते हैं प्रोग्राम कहां जाता है और किधर को हमें ले जाता है। अलबत्ता अगला जो एक कलाम है, एक गज़ल का पैगाम है, वो दे रही हैं जनाब मशहूर मरूफ गायिका गुलुकारा आबिदा परवीन। आबिदा परवीन कहती हैं, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है।

जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। ये गजल पेश कर रही थी जनाब, आवाज थी आबिदा परवीन की, और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM साउथ एम्पटन। अखबर से आपसे मुखातिब है। अगली एक और गजल पेश करता हूँ, आपकी जानी पहचानी आवाज है, अनुमान कुछ ऐसा है गजल का। कहते हैं, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। ये बाबाज है समीन अताउल्ला खान ईसा।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: शामिन आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मताली सिंह की आवाज, राहों पे नजर रखना, होंठों पे दुआ रखना, आ जाए शायद कोई दरवाजा खुला रखना। ये इनकी बड़ी मशहूर मरूफ गजल थी, आपकी खिदमत पेश की गई। अभी आपको एक और आवाज सुनाता हूँ जी, डॉक्टर राधिका चोपड़ा, इनका भी गजलों में बड़ा नाम है। कहती हैं, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो।

लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। गायत्री अशोकन आपको ये गजल सुना रही थी। जिंदगी तो फिर भाई जिंदगी है, इसके साथ आना जाना तो है ही है। अलबत्ता मेरे जाने का, इस प्रोग्राम को छोड़ने का वक्त आ गया है। 8 बजने वाले हैं और आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम हर जुमात मुबारक को होता है जी, 6 से लेकर 8 बजे इवनिंग को। इसमें गाने नाते हैं और कभी कभी कुछ पंजाबी का भी तड़का लग जाता है, कवाली भी हो जाती है। अगर आप चाहें इसमें हिस्सा लेना तो ज़रूर जाइए www.awazfm.co.uk में और वहाँ पैगाम छोड़ दीजिए। आपकी फरमाइश जो है इस प्रोग्राम के लिए ज़रूर ली जा सकती है। मेरे हफ्ते में 4 प्रोग्राम होते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम मंडे के दिन होता है, जो आप सुन पाएंगे जनाब 11 से लेकर 1 बजे। और दूसरा प्रोग्राम होता है मेरा 2 से लेकर 4 बजे ट्यूसडे को। और तीसरा प्रोग्राम होता है जी जुमे तो मुबारक को ही, मगर वो होता है इस्लामी डिवोशनल प्रोग्राम, जिसमें सिर्फ नातें वगैरह होती हैं, गाने वगैरह उसमें नहीं होते। अगर आप नातों से दिलचस्पी रखते हैं तो वो आप सुन सकते हैं, एक इस्लामी प्रोग्राम है वो। और चौथा प्रोग्राम ये है, ये भी जुमे को दिन है, 6 से लेकर 8 बजे तक। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जाते जाते आपकी खिदमत में ये एक गाना छोड़ जाता हूँ जी, फिल्म मेला से लिया है मैंने, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, जाना पहचाना आपका गाना है क्लासिकल। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम न होंगे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिल्म मेला। यार जिंदा सुबत बाकी, अल्लाह हाफिज़। हो सका तो अपनी दुआएं में साईं को याद कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।

0: Sahara Drums, from Kingston to the Nile. Join me, Tap, for a show where you can listen to the vibes of Africa blended with music of the Caribbean, where heritage speaks volumes in the form of music. Combined with news, views, and opinions, bringing Africa and the Caribbean culture alive every Sunday at 1 p.m. only on Awaz 99.8 FM. See you then.
1: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज एफएम के साथ

0: I am a big fan, long-time listener, first-time caller.
1: You certainly are. You certainly are.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: Awaz FM is supporting local radio.
5: Local radio.
4: Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ एफएम के साथ

0: Your voice in your community. This is 99.8 Hours FM.
1: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: आवाज एफएम लोकल रेडियो Communities making waves, turning the tide on isolation.
4: I shine.

0: I don't think there's any love lost between those two.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Now, your favorite music right here. Your favorite radio station.
4: Awaz FM.

0: It's thunder, lightning. The way you move is frightening.
1: Thunder.
0: Gotta knock on wood. See, we can do it all in this show. We can do it all in this show.
2: The ASA regulates UK ads across all media, including radio, to make sure they stick to the rules. Simples. You should be able to trust the ads you hear, whether or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
5: Hello, this is Ifana Simro. I'd like to dedicate this to Hours Radio Southampton and the whole team. Naam gum jayega, chehra badal jayega, meri awaaz se pehchan. Thank you, Ali.
4: Southampton's Community Radio, Hours FM.
6: Zara, ruk ja.

0: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
1: थैंक यू मॉम।
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: Get in touch with Awaz FM on WhatsApp 07784 691 440.

0: वाला क्लाउन बनाऊंगा।
1: कर दे जो हाथ तुझे कभी ना रुलाऊंगा, नो मैटर हाउ बिजी फोन मैं उठाऊंगा। चेंज होते मौसम जैसा यार नहीं तेरा, तू सोते रहना बच्चों को ड्रॉप कर आऊंगा स्कूल में। हाँ।